स्वाधीन कुंदी लगा सरकार वाला निकाय उद्धार को काम लाए पनी निरंतर का दिए कासन मृत्यु है का रुको शॉप के बस खाता मुसंगे उन्हें स्थापना को लाए इतने मात्र वासे निकाय बाटा सभी काम निक्रम शुरू है कोशन सरकारी तथा और सरकार वाला निकाय ले शॉप के बस खाता को काम लाए पनी तीव्र का दिए कासन ऐसे बीच सरकार ने रहा तो तब स्थापना ना ये तो तक का इंतजार को लाए विभिन्न प्रकार का सुधार कर मेरे सरकारों दिले आए कोशन सरकार वाला निकाय ले उधार को काम लाए तो प्रभावारी रूप में गाड़ी बढ़ाने में मशक्के को उन्हें सरकार तो सरकार वाला निकाय को हम तो ना दिले दिले आए कोशन कठिन स्थान में फंसे पनी रहा तो जो सरकार वाला निकाय ले पुलिस चालक को काम लाए ले पड़ते करने उधार को काम लाए को उन्हें आपन भरने आक्रोश व्यक्त करने आए का सब पति पर व्यक्ति करने सरकार ने जति इस बात पर आरोप लगाने को सब में व्यक्ति के सुधार वाला निकाय ने मशक को उन्हें आपन चला पनी कर दिया ऐसा किसी को रस्मों को पॉलिटिकल चीज में आए को भारी पॉलिटिकल ऑफिसर ने कहा कि विभिन्न देश के पर्यटकों को उधार कार्य जारी था पर्यटकों में से दूसरे नब्बे पर्यटकों को उधार कार्य को नेपाल प्रदेश आए को सर नेपाल प्रदेश को ने देखो जानकारी अनुसार जो देखो सीमा नेपाल प्रदेश को ने देखो जानकारी अनुसार

seen that. One of them will be Mata, Patozar, Zerman, Patozar, Italy, Mata 3, Bulgaria, Mata 8, Oman, Mata 8, Portugal, Mata 8, Russia, Mata 3, Switzerland, Mata 8, Turkey, 3, Olivia, Turkey, Portugal, Mata 8, Mata 8, Mata 8, Mata 8, Mata 8, इसलिए इसका पास है एक ऐसा रिक्वायरमेंट जैसे सपोर्ट ऑफ़ इंडिया को नीड टू प्रमोट कर रहा है।

0: मेनू तक परिवार में संसार नहीं प्रहरी परीक्षा होगी वहां इस प्रश्न को अगर मैं ठाक है कि क्या हो एकचोटि समझाऊ नमाने प्रहरी रेखा होगा इस प्रश्न को विवाह करें बाल विवाह हो इसको विवाह के कारण हो विवाह कारण एक काम को कारण नहीं हो
1: बाल विवाह कानूनी अपराध हो इसलिए आज ही बात

वगैरह नहीं। तो अब जब माता जी जीते हुए तो माता ही जैसे लड़का मांगी सब लोग खाए तो माता ही मांगी खाए तो कठे सधाई गिर खाद भाषण कठे सधाई गिर अब जब की सधाई गिर अब खाना खाकर मांगा कहीं

अनुसंधान केन्द्र संगठन सहभागी रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मित्रता का साथ साथ विश्वभर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत छ।

0: तब तो मोबाइल नहीं है। एक हिसाब से सोच मोटर सजिलो फिर हुई वो बिगाड़ फिर गहलस जे कोई यमा ऐसा बा कि जौन रास्ता यमा सीखी तो उन्हें रास्ता रही यमा बढ़िया फिर हो बहुत बढ़िया चीज हो और फिर बहुत बेकार हो।
1: ई हो रेडियो गुरबाबा FM 89.7 में कहा
2: आवा संजय ठीक पार बदलबा आप सुनी मौसम बुलेटिन।

0: राम राम हो दाजु। पावर टिलर लेने एनो का खोजती
1: का रही भाई? ये पावर टिलर बनैना रह, ओहो बनैना दुकान खोजत। अच्छा त रह, कहाँ चल गेल ना पशुपतिनाथ सप्लायर्स?
0: उ दुकान त उहेरी दाजु, नवजीवन सहकारी पछि पाजर पुरान दुकान रहन रोड के सोझे उत्तर ओर सरल बा, उहेरी दाजु।
2: हजुर का अपना होकरा फिर कृषि खेती कला कुछ सामान ले चाहती। अब बर्दिया का बांसगढ़ी में रहल पशुपतिनाथ सप्लायर्स में इंडियन इटालियन धान कटना रिपर चाइनीजो इंडियन मिनी टेलर कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मशीन हार्वेस्टर साफ कटर लगाए पशु पंक्षी का दाना बनाना प्लेट मशीन पैना का संगसंग खेती किसानी करना सक मेरिक सामान उपलब्ध बा। उसे का बिगड़ल सक मेरिक कृषि का मशीन फिर विशेष छूट में बना जाए। खबर करल से घर में जाकर फिर बना देता। हजूर का अपना फे कृषि संबंधी कोनो सामान किन चाहती? यदि चाहती कल से समझबी अब पांच कड़ी मारा लग पशुपतिनाथ सप्लायर्स।
0: संपर्क नंबर 9858025014 ओ 9824026080।
2: नवजीवन सहकारी संस्था का पक्ष पुरान फसल रलक ठाव से रोड का उत्तर पांच अलग जान।

0: राम दाजु पावर टिलर ले नै हेर्नु कहाँ खोज ती
1: कहाँ भाइ यही पावर टिलर बनाइना रह ओ बनाइना दोकान खोज तु
0: अख्खा त रह
1: कहाँ चलेला पशुपतिनाथ सप्लास
0: ऊ दोकान त उनीहरू दाजु नवजीवन सहकारी पछि पार्लर पुरानो दोकान रहन रोडकै खोजे उत्तर स्थानमा उनीहरू दाजु
2: हजुर आफ्नो प्रत्येक कृषि खेतीका लागि सामान लेख चाहती अब बढ्दै आता बाँसकोटीमा रहल पशुपतिनाथ सप्लाजमा इन्डियन इटालियन धान कटना रिपर चानिचो इन्डियन मिनी टेलर कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मेसिन हार्वेस्टर साफ कटर लगायत पशु पंक्षीका दाना पैनामा प्लेट मेसिन कोइनाका सन्सन र खेती किसान गर्न सकुमेरी सामान उपलब्ध भए उसैले दिग्रह सकुमेरी कृषि कर मेसिन फेरि पिछे छुटमा बना जाए खबर कल से खरमा जा सको बना हजुर का अपना कृषि संबंधी कौन सामान किन चाहती यदि चाहती कल से संसदीय 5 बजे मारा पशुपतिनाथ सप्लाय
0: संपर्क नंबर 98580-25014 98224-0268
2: नवजीवन सहकारी संस्था का पक्ष पुरान पसंद ठाव।

मानव बेच बिखन वृद्धों को अभियान रोकथाम नहीं समाधान रोजगारी पढ़ाई व कमाई को लोभ दिखाए मानस बेच बिखन और उसार पसार करने घटना दिन दिन बढ़ते तस्वत यात्रा व काम का लगी कतई ज्यादा होने विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास कर अपना कागजात सुरक्षित राख्होस रही शंका लगे में तुरंत नजीक को सुरक्षा कर्मी जानकारी दिहोस आपत्कालीन अवस्था में कह कल करने नेपाल प्रहरी 100 व 11-13 मानव बेच बिखन बुद्ध को ब्यूरो 11-77 तथा बाल हेल्पलाइन 10-9-8 में कल करोस हमी मिले मत रोक सकते मानव बेच बिखन को जान भारतीय यूनेस्को क्लब और प्लान इंटरनेशनल नेपाल को साझेदारी में जिला प्रशासन कार्यालय बदलिया द्वारा जनहित में जारी संदेश

आदरणीय कविराज हमारा प्राचीन जीवन से आदिवासी समाज बांसगढ़ी गोडनाइट के समुदाय का चलाते सामुदायिक रेडियो को बाबा ही उन्हें उन्नास सात मेगा से गोटी बाटी अगला हमारे स्टूडियो शैली में राजीव दल बसा हमारा आज संपूर्ण सेवा प्रयास जानकारी थी समावेशी रेडियो सजी आवाज रेडियो पूर्वाधार सुनकर साथ देता अपना धन्यवाद।